हिसाब समझो आयो लिफ्ट मी पापा मेक मी रो कारो को जियो वन समेशी इफ मी लिव एंड यू नो वे मिस मी सो अगेन मैं आउनु मदा वे लूस मी मिस बांगारांग नाउ आई मिस बांगारांग दिस वर्क मी बार मिस बांगारांग ओपो या ना लुक टू कना यू ना नंबर 1 यू सेक्सी यू लोन टू यू अटेंड यू स्पंग नो फेकारी बांगा सोंगो यू दे नो समांग आर यू अप चानांग आर यू अप अटांग ओपो या ना लुक टू कना Me bar Miss Banga you hotty, Miss Banga you sexy, you low to you spang, are you a dry attendee?